0: juga dengarkan gosip-gosip panas dan perkembangan industri filem Hollywood dan Bollywood.
1: Mom, take a chill pill.
2: Yes, ma'am. English में बोल देंगे, लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है.
0: Jom dengarkan Koli Boli setiap Sabtu pukul 9.30 minit malam hanya di Zone Inspirasi Pahang FM. Koli Boli.
3: Jabah.